वाशरुमा खरीरापन जो कार रूपा आकाफा काफाया खै खै फाया क्या छुआन खटियाँ सूर पाया जो चाइना चेंपा ये